0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் எரிபத்த நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் தட்சிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி. இன்கா நாம் ஹை எரிபத்தர். मध्यकालीन चोल राजाओं की दूसरी राजधानी थी करूवर। वहां पुगल चोलन नामक सम्राट राज्य करते थे। उसी करूवर में एरिपत्तर नामक शिव भक्त भी रहते थे। वे सदा अपने हाथ में एक परशु रखते थे। शिव भक्तों को कष्ट अथवा हानि पहुंचाने की गलती या अपराध करने वाले को परशु द्वारा तत्काल दंडित करना ही उनका लक्ष्य था। एक दिन शिवकामी आंडार नामक एक वृद्ध शिव भक्त एक टोकरी में विविध रंगों के सुंदर पुष्पों का चयन कर शिव को अर्पित करने के लिए जा रहे थे। उसी क्षण सम्राट की हाथी पीछे से आ रहा था। उसने अपनी सूंड से टोकरी छीन कर उसे नीचे पटक दिया। बिखरे फूलों को देखकर वृद्ध शिवकामी आंडार अत्यंत व्याकुल हो उठे और रोने लगे। उनके हृदय के रोदन का स्वर सुनकर एरिपत्तर संत न जाने कहां से वहां आ पहुंचे। घटनाक्रम को जानकर उन्होंने तत्काल अपने परशु से सम्राट के हाथी की सूंड काट दी। हाथी के महावत और रक्षक वहां से भाग गए और सम्राट को सूचना दी, कुछ लोगों ने आपके हाथी को मार गिराया है। सम्राट ने समझा कि कोई शत्रु राजा सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उन्होंने तत्काल ही उस घटनास्थल पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना सहित उस घटनाक्रम पर पहुंचे तो राजा चकित होकर दिखने लगे कि न वहां पर कोई शत्रु राजा था और न कोई शत्रु राजा की सेना। वहां तो एक तो एरिपत्तर स्वयं खड़े थे। सम्राट आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। पूरी घटना की जानकारी प्राप्त कर सम्राट ने बहुत दुखी मन से एरिपत्तर के समीप गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, शिव भक्त के प्रति मेरे हाथी द्वारा जो अपराध हुआ है उसके लिए सिर्फ हाथी को दंडित करना पर्याप्त नहीं है। मैंने ऐसा अपराध होने दिया, इसलिए इसका उत्तरदायी मैं ही हूँ। न्याय के अनुसार मुझे भी दंड मिलना चाहिए। हे हेरिपत्तर, हे स्वामी, मैं इस योग्य भी नहीं कि आपके परशु से मारा जाऊं। लीजिए मेरा खड़ग, इससे मेरा अंत कर दीजिए। ऐसा कहकर राजा ने खड़ग शिव भक्त एरिपत्तर के समक्ष रख दिया। यह सुनकर एरिपत्तर संत भय से कांप उठे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई सम्राट भी ऐसा प्रबल निष्ठावान भक्त हो सकता है। सम्राट की शिव भक्ति और उनकी विनम्रता को समझे बिना उन्होंने उनको दुख दिया। इस विचार से उनके मन में आत्मग्लानी भर उठा। ग्लानी और पश्चाताप में एरिपत्तर सम्राट की तलवार से अपनी ही गर्दन काटने को उद्यत हो गए। चौंक कर राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पारंपरिक अनुकंपा की भावना से परिस्थिति विश उठी हुई विपदा का प्रेम पूर्वक समाधान हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों के हृदय में जो सच्चा प्रेम और भक्ति भावना है उसे संसार के सामने उजागर करने के उद्देश्य से ही हमने यह लीला रची थी। यह शिव की ही वाणी थी। भगवत कृपा से सम्राट का हाथी भी जीवित हो उठा और पुष्प स्वतः ही टोकरी में पूर्ववत एकत्र हो गए। सम्राट पुगल चोलन ने एरिपत्तर को हाथी पर आगे बिठाया और स्वयं उनके पीछे बैठकर प्रस्थान किया उस स्थान से। कालांतर में एरिपत्तर नायनार को शिवलोक में स्थान मिला और वे कैलाश में शिवगणों के मुखिया बने। एरिपत्तर जैसे शिवभक्त भी बाहरी वेशभूषा के कारण कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आते हैं। एरिपत्तर के मन में ऐसा पूर्वाग्रह था कि सम्राट होने के नाते पुगल चोलन संत नहीं हो सकते, परंतु सम्राट तो इतने विनम्र संत निकले कि स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगा और यह भी कहा कि मैं आपके परशु द्वारा मारे जाने के योग्य भी नहीं, मतलब आप मेरा खड्ग से ही मुझे इस शरीर रूपी माया से मुक्त करें। इसे एरिपत्तर को सम्राट के प्रति एक नवीन दृष्टि मिली। इस कथा में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभु प्रेम में सरोवर दो संत आमने सामने आए हैं और एक दूसरे पर दोष लगाने के स्थान पर दोनों ही अपने आप को स्वयं दोषी सिद्ध करने पर दंड दिलाने की होड़ में लगे हुए थे। यह प्रेम की परिपक्व स्थिति थी। एरिपत्र संत आज भी हमारे बीच में उजागर हैं, उनके इस भक्तिभाव को आज भी लोग याद करते हैं और साथ ही सम्राट पुगलचरण को भी याद करते हैं। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं।
4: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of shaivam.org radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami.
5: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
6: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 1. Thank you.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Yathashakti, wo bhi kaisa hai? Yathashakti. Sri Pancha Kritvava एवं अभ्यस्यतः कितना बार करे का तीन बार करो पंच बार करो त्रि अथवा पंच पांच एवं अभ्यस्यतः इस प्रकार का अभ्यास करो है बात अभ्यास करो अभ्यास करो सवन
2: ओम नमः शिवाय
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org